0: नमस्ते, आप एमओपी समिति आकाशवाणी 107.8 को सुन रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। चोर स्वाद की बातों को हम राष्ट्र हित के लिए जीना सीखे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ मैं मातृभूमि तुम्हें सब कुछ समर्पित। मैं मोनिका बीबीए से और मेरी कुछ सहेलियों के साथ राष्ट्र के देशभक्तों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। अब आ रही है मेरी सहेली रोशनी रानी लक्ष्मीबाई की एक कथा के साथ।
1: एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़कर है नारी, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे है आरी। रानी लक्ष्मीबाई वीरता और शौर्य की बेमिसाल निशानी। भारतीय स्वतंत्र संग्राम की जब भी बात होती है तो वह वीरांगनी के वर्णन के बगैर अधूरी मानी जाती है। यौन तो नारी को कोमल और ममता की देवी माना जाता है, लेकिन समय आने पर महिला का चंडी रूप विनाश का परिचय साबित होता है। लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्र संग्राम का वह ध्रुव तारा है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती है। अब मेरी सहेली मोनिका हमें सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगी।
0: जी हाँ, मैं मोनिका देश की नारियों के प्रति एक गीत समर्पित करना चाहती हूँ।

0: अब आ रही है मेरी सहेली संजना एक सुंदर कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं एमओपी समिति आकाशवाणी 107.8 को।
1: मैं संजना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने जा रही हूँ। असल मायनों में बोस, अगर आप सोचते हैं कि कहानियों में आने वाले साहसी कारनामे करने वाले नायक सिर्फ कल्पनाओं में होते हैं, तो शायद आप गलत हैं। सुभाष चंद्र बोस वह शख्स है जिन्होंने अपने कारनामों से न सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी एक अलग फौज भी खड़ी की थी। देश से तो उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन माटी की स्वतंत्रता के लिए